0: local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 2MIA FM. Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, 2MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Bobby's Punjabi Talk Show. Hashtag part of your community.
2: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ, थोड़ा फेवरेट शो बॉबी पंजाबी टॉक शो लैके तो शुरू करते हैं अज का शो। एक बहुत ही प्यारे शब्द के नाल, धार्मिक गीत के नाल, जिसन गाया दिलजीत दोसांझ ने। फिर उस तो बाद आप एक दो होर धार्मिक गीत चलावे, तो उस तो बाद आप मिलावे थानू अपने मानयोग अंकल हरवंत सिंह चौहान जी ने, जो अज फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट करे। सो पंजाबी सभ्याचारक गाने या फिर हिंदी गाने ना। सो आप शुरू कर दिया अज्ज दा शो इस बहुत ही प्यारे धार्मिक गीत दे नाल, आर नानक पार नानक।
3: समुंद शाह सुल्तान गिरह से ती मालकन कीड़ी तुलना हो वली जे तिस मनो न मिसरे